पंजाबी मेरी जान वर्गी पंजाबी मेरी पहचान वर्गी पंजाबी बुजुर्ग दी दुआ वर्गी पंजाबी निरे खुदा वर्गी पंजाबी नानक दी रबाब वर्गी पंजाबी कोरे जवाब वर्गी पंजाबी चमक दे आफताब वर्गी पंजाबी नैणा दे नीर वर्गी पंजाबी सजना दे नां वर्गी ते पंजाबी बोर्ड दी छां वर्गी भुल के भी ना इसनों भुलाउणा क्योंकि साडी पंजाबी है मां वर्गी सुनते रहना प्रोग्राम नचता पंजाब हर मंगलवार की शाम 3:15 तो लेके 4:45 तक बने रहो नचता पंजाब की टीम अमरीक जी तेरीना सिंह के नाम धन्यवाद जी नचता पंजाब 104.6 प्लैनेट FM ते ऑनलाइन सुनने लिए www.planetaudio.org.nz/nachdapanjab

दीजिएगा, आप इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं planetaudio.org.nz/sainvachanamrit. ये कार्यक्रम एक सप्ताह तक ऑनलाइन अवेलेबल है.